0: हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्ज संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: वर्ज पेन से घर रंगाउनु होस् त लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: वर्ज पेन्स

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी।

0: चाहिए, तुम ठीक हो?
1: यस अंकल।
0: हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक ओके पापा। हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फ्रेंड्स। अब सो जाओ। गुड नाइट। मामा
2: सरस्वती